लगभग संगत सज चुकी है। आने वाली संगत दे चरणा विच बेनती है, सतगुरु साहिब जी नू नमस्कार करन तो उपरंत जिथे जिथे भी आप जी नू जगह मिलती है, आप जी पोथी साहिब दी ताबिया सजन दी कृपालता करो। कुछ मिनटां विच ही असी हुण संथिया प्रारंभ करते हाँ। संथिया का समा हो गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उन्हां समां निरंतर जाप करी चलीए जी।

प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहे निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता।

सब किछ चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीव दिवाल उसारी पास मंदर की ढेरी संचे संच ना देई किस ही अंध जाने सब मेरी सोयन लंका सोयन माड़ी संपैक।

गुर मिलिया तृष्णा अगन बुझाए, गुर ते शांत वसै मन आए, गुर ते पवित पावन सुच होए, गुर ते शबद मिलावा होए, बाज गुरु सब भरम भुलाई, बिन नावै बहुता दुख पाई, गुरमुख होवै सो नाम त्याई, दर्शन सच्चै सच्ची पत होई, किस नो कहिए दाता इक सोई।

0: मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापै, सब किछ साचा आपे आपै, कर्म होवै सत संग मिलाए, हर गुण गावै बैस सुथाए रहाओ।
1: सुथाए पाठ इकट्ठा ही कर लै, बैस सुथाए सुथाए दर्शन सोने था संगत विच बैठ।
0: हर गुण गावै बैस सुथाए रहाओ, जलो एह जिहवा दूजै पाए, हर रस न चाखै फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावै दुखिया चलिया रोए, रसना हर रस चाखिया सहज सुभाए, गुर किरपा ते सच समाए, साचे राती गुर सबद विचार, अमृत पीवै निर्मल धार, नाम समावै जो भांडा होए, नाम समावै जो भांडा होए, उंदै भांडै टिकै न कोए, गुर सबदी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस सबद प्यास, गौड़ी गुआरी री महला तीजा, एक गावत

सत गुर भावै मन तन राता नाम सुहावै रहाओ। एक गाव है एक भगत करे हे नाम ना पाव है बिन असनेह सच्ची भगत।

तिन तू विसरा है जे तुद आप भुलाए तिन तू विसरा है जे दूजे पाए मनमुख अज्ञानी जोनी पाए जिन एक मन तुठा जिन एक मन तुठा।

0: सौ पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया।
1: हुण इत्थे इस शब्द दा जिहड़ा सिरलेख है उहदे वल ध्यान दिओ। गौड़ी गुआरी जी महला चौथा चौथा पहला अंक दे नाल चार लिखिया होया ते फिर अखरां दे विच चौथा शब्द लिखिया होया। इनू दो बार उचारण है दमदमी टकसाल संप्रदाय पंडरां दा यह असूल है। जे पहला अखरां विच लिखिया आ जाए फिर इको बारी उचारण करना है। जे पहला अंक फिर अखरां दे विच लिखिया होवे फिर उन्हों दोबारा दो बार उचारण करना है। जिमें पाठी सिंह जी ने पढ़िया वो ठीक पढ़िया है तो ख्याल रखना।
2: हाँ इस तरह दास भी हाजरी लवावे। बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी अवतार सिंह जी आप जी दे नाल गुरबाणी पाठ बोध विच गुरबाणी दे पाठ दे उचारण बारे अते भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी विचारां दर्शा रहे हन ज्ञान बोध दे रहे हन। सो अज सतगुरु साहब जी की कृपालता नाल किसे बहाने अज दे समागम विच आप समूह संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। जिवें इस पाठ दे उचारण दा जो सिरलेख आ रहा है ज्ञानी जी ने दर्शाया है ये आप होर भी ऐड कर सकते हैं कि ये चौथा इत्थे आया है होर तीसरा भी आ सकता है ज होर शब्द भी इस तरह आउणगे। इस निजम विच ही सारे पाठ इस तरह करने हैं। जे पहलो अंकां विच फिर अखरां विच दो वारी प्रोनाउंस करना है। जे पहलो अखरां विच फिर अंक ने फिर एक वारी करना। इस तरह साध संगत जी इस अंक ते ही उपर जिहड़ा शब्द पहला चल रहा है नंबर दो दी पौड़ी तो अगे मनमुख गर्ब ना पायो अग्ञान इयाणे। इस पद नूं ध्यान नाल वेखियो सतगुर सेवा ना करहे फिर पछताणे। अगे पाठ आ रहा गर्भ जोनी। सो एक थां ते गर्भ बब्बे नाल है एक थां ते गर्भ भब्बे नाल है। सो आम तौर ते नौजवानां बच्चियां विच इत्थों दे बोलण वालियां दे नाल ज़्यादा वाह रहिंदा है। इन्हां अखरां दे उचारण वास्ते फर्क नहीं पाया जांदा जां जवान उबल नहीं पूरा पाउंदी। की कारण हुंदा है इन्हां चीज़ां ते ध्यान दी लोड़ है कि जे बब्बे नाल है गर्भ भोला है उहदा अखर हंकार बनना है ते जे गर्भ भब्बा है उहनूं भारा करके बोलिया जाएगा उहदा है माता दे गर्भ विच उधर विच उस दा अर्थ ही बनेगा। सो इस तरह यह बेनतियां हन।
0: पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया

0: कर्म करे सुरतन पावे, जिमें पढ़िया गया है शुद्ध इस तरह पढ़ना है, इन सुरतन नहीं पढ़ना सुरतन, रारे ते जोर दे के जिमें अधिक बोली जाती वैसे अधिक है नहीं, पर उच्चारण इस तरह करना सुरतन पावे। हाँ जी,
1: ऐसा की वार दा जदों गुरमुख प्यारे कीर्तन करते ने तो आम ही यह पाठ लख सुरतन संग्राम सुनने नूं मिलदा है। सो उत्थे भी यह ख्याल रखना है, उत्थे भी पाठ सुरतन ही है, लख सुरतन संग्राम। सो यह अदक दे सहत जिवें बाई जी ने बेनती की है, अदक दे सहत पारा करके ये पाठ होवेगा। आसा की वार दे कीर्तन विच आम ही सुनीदा है तो उत्थे भी फिर सुरतन ही पाठ बोलते ने। अगे जदों आसा की वार दे शब्द आउणगे उदों आप जी नूं भी बेनती की जाएगी, पर इस पाठ का जरूर वर्जर जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यह रूटीन विच सुनिया जाण वाला पाठ है ते यह आम करके सुरतन ही पाठ जाने अणजाने कीता जांदा है। सुरतन पाठ ही शुद्ध है जी। हाँ जी,
2: सूद वैस पर किरत कमावै, मैं मूरख हर नाम छडावै, सब तेरी सृष्ट तू आप रहया समाई, गुरमुख नानक दे वडियाई, मैं अंदुले हर टेक टिकाई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, धर पौजल अकथ कथा सुन हर की, गोबिंद सत संगत मेलाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ।
0: जिना रहाओ दी पंक्ति दा जे विश्राम लाउणा है गोबिंद, गोबिंद ते ठीक रहूगा, गोबिंद सतसंगत मिला, हे वाहिगुरु मैनू सतसंगत दे विच मिला दिओ।
2: गोबिंद सा

मन चित भावै जन पग रेण वड भागी पावै संत जना स्यो प्रीत बने आई जिन कौ लिखत लिखे।

त्रिपित त्रिपत गुर साचा गौड़ी गुआरेरी महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बणी जिन जित मिल हर नाम त्याया हर धणी जित मिल हर नाम त्याया हर धणी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी घणी गुरसिख।

मेरे गोसैया, जानकी उपमा तुझ है वढैया, रहाओ मंदर घर आनंद हर, हर जस मन भावै, सब रस मीठे मुख लग है, जा हर गुण गावै, हर जन परवार सधार है, इकीह कुली सब जगत छडावै, जो किछ किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू वरतदा, हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाए दा, आपे वरताई, लाला हाठ विहाजिया, क्या तिस चतुराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम, कासी को हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है, हर की वडियाई।

त्यो हर जन हर हर जप करे हर अंत छड़ाए। मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम, मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम। गुर सतगुर से

त्यो हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै विख संचै हटवाणिया बहे हाट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यो हर जन हर धन संचया हर खर्च लै जाए एहो माया मोह कुटंब है पाए दूजै फास गुरमती सो जन तरै।

0: विश्राम ठीक लाया गया है मेरे राम तोड़ बंधन माया ये माया ते विश्राम आना याद रखियो कई बारी असि काली विच बंधन ते भी विश्राम ला जाने हैं मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए हां जी
1: नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया कै बंधै कै डान ले कै नरपत मर जाया धन धन सेवा सफल सत गुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया।

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवै, तू गुणवंत तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लै हे हर भावै, हम अपराधी राखे गुर संगति।

कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूके सब सोग संता।

गुणवंता हर हर दयाल कर गुणवंता हर हर दयाल गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बखस अवगण सब मेरे रहाओ किछ रूप नहीं किछ जात नाही किछ ढंग ना मेरा क्या मोह लै बोल है।

गोरमुख रंग भया अत गूढ़ा, हर रंग भिन्नी मेरी चोली, अपने हर प्रभ की हौ गोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दिनो जगत सब गोल अमोली। रहाओ करहो विवेक संत जन भाई, खोज हिरदय देख टंडोली, हर हर रूप सब जोत सबाई, हर निकट वसै हर कोली, हर हर निकट वसै सब जग कै, अपरंपर पुरख अतोली, हर हर प्रगट कियो गुर पूरै, सिर बेचो गुर पह मोली, हर जी अंतर बाहर तुम सरनागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अन दिन हर गुण गावै, मिल सतगुर गुर वे चोली, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीश्वर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरहो स्वामी, तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते।

हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिन के पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिन कौ लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम संग राते दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते

0: सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनहो दे काने जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा मेरा प्राणे राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुगद असुध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाओ जितने रस अन रस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते साकत मूड देवाने तिनके करमहीन तुर पाए तिनके करमहीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने जिन को तुम दया कर मिल हो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी कहो किथै हर पहो नसीऐ हर आपे बखस ले प्रभ साचा हर आप छडाए छुटिया मेरे मन जाप हर हर हर मन जपिया सतगुर की सरनाई भज पाओ मेरे मना गुर सतगुर पीछा छुटिया रहाओ मेरे मन सेव हो सो प्रभ सरब सुखदाता जित सेवै निज घर वसिया गुरमुख जाए लहो कर अपना गुरमुख जाए लहो कर अपना घस चंदन हर जस कसिया मेरे मन हर हर हर हर जस ऊतम लै लाहा हर मन हसिया हर हर आप दया कर देवै ता हर हर
1: मेरे मन फिर पंक्ति पढ़ो
0: मेरे मन हर हर हर हर जस ऊतम
1: एक बारी होर हर मेरे मन हर हर हर हर हर जस ऊतम
0: मेरे मन हर हर हर हर जस ऊतम मेरे मन हर हर
2: दो बारी बोली जाओ हर हर हर हर हर जस एम बोलो फिर सही हो जाओ
0: मेरे मन हर हर हर हर हर जस ऊतम लै लाहा हर मन हसिया हर हर आप दया कर देवै ता अमृत हर रस चखिया मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे ते साकत नर जम कुटिया ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिन कै निकट ना पिटिया मेरे मन सेव हो अलख निरंजन नर हर जे

मेरा हीरा प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे।

0: जो हर हर कथा सुनावै हिरदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावै मन रसक रसक हर रस आगाने फिर बहुर ना भूख लगावै कोई करे उपाव अनेक बहुत तेरे बिन कृपा नाम ना पावै जन नानक कौ हर कृपा धारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै राग गाओ।
1: संगत जी पिछे पंक्ति गुरु प्यारे पढ़ के आए ने हम मल मल धोग है पाव गुरु के बड़े ध्यान नाल महाराज दी हजूरी च बैठे हाँ। कई बारी ये सुनिया गया कि जो ध्यान ना किया गया तो पाठ आम तौर पर हो जाता भी हम मल मल धोव है पाप गुरु के। इस तरीके दे नाल ना हो जाए पाप का अर्थ है चरण धोने गुरु साहब जी दे। बहुत ध्यान दे नाल इस पाठ का उच्चारण करके सही रूप विच करना जी।
0: राग गाउड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा।
2: ये जिहड़ा शब्द दा सिरलेख आया है इनू ध्यान दे नाल पढ़ना है। राग गाउड़ी माज माज राग पिछे भी आ गया ये हुण गौड़ी ते माज राग मिश्रित राग दे विच शब्द उच्चारण किया क्योंकि गौड़ी राग की माज जाति नहीं हो सकती। माज राग वखरा राग है ते दोनों रागां दे विच समेलत गुरु महाराज ने अगे ये शब्द उच्चारण किया। हाँ जी
0: गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा बड़भागी।

आओ सखी गुण कामन करिया जियो, मिल संत जना रंग मान है रलिया जियो। गुर मिल संत जना रंग मान है रलिया जियो। मिल संत जना रंग मान है रलिया जियो। मिल संत जना रंग मान है रलिया मिल संत जना रंग मान है रलिया जियो। गुर दीपक।

0: मन आनंदन अनदर हस जियो हर पायड़ा बड़भाग गई मेरे गोविंदा
1: बड़भागी
0: हर पायड़ा बड़भाग गई
1: बिहारी लागे बड़भागी
0: हर पायड़ा बड़भागी हर पायड़ा बड़भागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो हर आप उपा

0: तुद विटड़ह हो तुद विटड़ह सद बारी जियो
1: भी मगर उच्चारण करना विटड़िया हो
0: वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हो तुद विटड़ हो सद वारी जियो
1: सियारी भी विटड़िया हो सद वारी जियो

0: स्वामी सगल कटा के अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचा एहो गुर उपदेश मने महले हो जा को राम नाम लिव लागी कहो नानक सो धन वड भागी गौड़ी।
1: इस शब्द ने चौथे बंद विच सर्व सुखा सुख साचा एहो हाहे नूं अंकड़ाया दो पंक्तियां विच ते इहनूं थोड़ी जी छोटी आवाज दे विच उच्चारण करना है। सर्व सुखा सुख साचा एहो गुर उपदेश मन मैं लेहो एहो ते लेहो जी लंबी मात्रा विच उच्चारण करने फिर हौड़ा लग जांदा है ते आपां औंकड़ दा छोटी आवाज दे विच ही उच्चारण करना है। हाँ जी
0: सर्व सुखा सुख साचा एहो गुर उपदेश मन मह लेहो जा को राम नाम लिव लागी कहो नानक सो धन वड भागी।

हर हर नाम जपत जन तारियो, अगन सागर गुर पार उतारियो, रहाओ कर कीर्तन मन सीतल भए, जन्म जन्म के किलविख गए, सर्ब निदान पेखे मन माहे, अब

0: सब जाए, गुर पूरै सब भरम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, अगले मुए से पाछै परे, जो उबरे से बंद लाक खरे, जो उबरे से बंद लाक खरे, जह धंधे मह ओए लपटाए, जेहे धंधे मह ओए लपटाए, उनते दुगण दिड़ी उनमाए।
1: जिस तरह पाठ कीता है उनते दुगण, इसे तरह पारा थोड़ा जा पाठ होना है।
0: ओहो बेला कछ चीत ना आवै, बिन सजाए ताहू लपटावै, रहाओ आसा बंदी मूरख देह, काम क्रोध लपटयो असनेह, सिर ऊपर

चतुर सियाणा करणै हार न बुझै बिगाना करणै हार न बुझै बिगाना अपनी गत मित आपे जानै क्या को कहै कि आख वखानै जित जित लाव है तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना

खसमै के ओए खसमै कै ग्रेहे उन दुख सहाम। ज्यो सुपनै होए बैसत राजा नेत्र पसारै ता निरारथ काजा।

उत्तर कलत्तर गृहस्थ का फासा, उत्तर कलत्तर गृहस्थ का फासा, हो न ना पाय उत्तर कलत्तर ग्रस्त का फासा, उत्तर कलत्तर ग्रस्त का फासा, हो न ना पाय राम के दासा, कवन सो बेद जित राम गुण गाय, कवन सो मीत कवन सो मत, कवन सो मत।

हम ते कछु न हुवै देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच बखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल करमा, जो तुद भावै सो सच धर्मा।

तुज बिन निमख न जाई रहना, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण तू मेरे साहिब तू मेरे खान रहाओ, ज्यों तुम राखाओ ते भी रहना।

तू मेरी सोभा तुम संग रतिया तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया मन तने अंतर तुही ध्याया मर्म तुम्हारा गुर ते पाया सतगुर ते दृढ़या एक एक है नानक दास हर हर हर टेक है गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा व्यापत हरख सोग बिस्थार व्यापत सुरग नरक अवतार व्यापत धन निर्धन पेख सोभा मूल ब्यादी।

0: व्यापत अहंबोध का माता, व्यापत अहंबोध का माता,
1: टिप्पी होनी है अहं,
0: व्यापत अहंबोध का माता, व्यापत अहंबोध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े आर बसता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता।
2: जिवें बेनती कीती सी माता ते माता, ये पाठ आउणगे माता मां दा वाचक हुंदा, माता मस्ते होएगा। सो इत्थे पाठ हुण भारा करके माता ही करना जिवें होया। हांजी,
0: व्यापत भूम रंग आर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सीगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करै हौ फासा, व्यापत कर्म करै हौ फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत एह जात, सब सब किश व्यापत।

मीत ना भाई, दरब सियाणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते, कर कृपा मोह सारिंग पान, संतन धूर सर्ब निधान, साबद पूंजी सतगुर संग, नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग, सो जागै।

भया निदाना। रतन लाल जाका कछु ना मोल, परे भंडार अखूट अतोल। खावह खर्चह रल मिल पाई, तो तोट ना आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लया रलाए। गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर। डर चूका देखिया भरपूर, सतगुर अपने को बलिहार। छोड़ ना जाई।

कोई ना कही जाय, बुरा भला कोई ना कही जाय, छोड़ मान हर चरण गही जाय, कहो नानक गुरमंत्र चितार, सुख पाव है साचै दरबार, गौड़ी महला पंजवा, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन कौ कहो का की कमिया, जाकी प्रीत गोबिंद स्यो लागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी, रहाओ जा को रस।

दुख सुख सम कर जापै ता कौ काढ़ा कहा ब्यापै सहज आनंद हर साधु माहे सहज आनंद हर साधु माहे।

थगल निदाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन मह थाना गुर प्रसाद किने विरलै जाना सहज कथा के अमृत कुंटा सहज कथा के अमृत कुंटा जिस है परापत तिस लै पुंचा रहाओ अनहत बाणी थान निराला ताकी धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरक अनंत हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कर गुरु नानक कौ

कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम होमै मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा।

सगले लाथे सतगुर अपने को कुरबानी आत्म चीन परम रंग मानी रहाओ चरण रेण गुर की मुख लागी अहंग बुद्ध तिन सगल त्यागी गुर का शब्द लगो मन मीठा पार ब्रह्म ता ते मोहे डीठा गुर सुखदा।

तभी चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल बोच है, खोज शब्द में राज करेगा खालसा, आकी रहना खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन खंडा जाके हाथ में, कलगी सो है सो हमरी रक्षा करे, गुरु कलगी तार जगदीश सो हमरी रच्छा।

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ तेरे कवन कवन गुण कह कह गाव तू साहिब गुणी निदाना

एहनिस सहज सुपा सुभाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत कसम दी।

हो, जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई,

देहो सज्जन असीसड़ी आज होवै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छिय घर छिय गुर छिय उपदेश गुरु एको वेस अनेक बाबा जय घर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोय रहाओ दिसुए चस्या घड़िया पहरा सिती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग सनासरी महला पहला गगन मै थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सहसव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योत भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिस्त लिखे गुर पाया मन हरलिव मंडल मंडा है कर साधु अंजुली पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध ना जानिया तिने अंतर होमै कंडा है ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पाव है जम काल सह सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे नीता संत टहल की बेला कीहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सरैणा रे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे

दुख पाप का नाश। सुनिया सरा गुना के गाह, सुनिया शेख पीर पातिशाह, सुनिया अंधे पावह राह, सुनिया हाथ हुवै असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। मन्ने की गात कही ना जाए, जे को कहै पिछै पछुताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। मन्नै मुहे चोटा ना खाए, मन्नै जाम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत स्यो प्रगट जाए। मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए।

नानक पवह न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंचे सोह है दार राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कै करने नाही सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार। धवलै उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए। लेखा लिखिया किता होए

ओंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर कर है भार

निराकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उतर सोखेह मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिरठी कौ साजे आपे जाने सोई

कह से पे के जैसनो बक्से सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह अमोल गुण अमोल वापार अमोल वापारिये अमोल भंडार अमोल आवह अमोल लै जाहे अमोल पाए अमुला समाहे अमोल धर्म अमोल दीबान अमोल तुल अमोल परवान अमोल बख्शीस अमोल निशान अमोल कर्म अमोल फुरमान अमोल अमोल आख्या ना जाय आख आख रहे ले बलाय आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्यान आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जान सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे

तुहन पावन पाणी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावह चित गुपत लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवत्या दार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सेई तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले।

पै जाय। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। केतिया खानी, केतिया बाणी। केते पात नरिंद, केतिया सुरते सेवक। केते नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। तिथै नाद विनोद कोड आनंद, सर्म खंड की बाणी रूप। तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे। जे को कहै पिछै पछुताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। तिथै घड़िया सुरा सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर। तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर। तिन मह राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे। जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसहै के लोअ। करहै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार। कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड। जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार। जिव जिव हुकम।

0: प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे,
1: प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे,
0: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता,
1: प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता,
0: प्रभु को सिमरे

0: वहत बारी
1: हर को नाम खिन माहे उदारी
0: अंक बने चरण करत नहीं तरह
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख कनेरे
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोरी बंधन पर है
1: हर का नाम जपत निस्तर है
0: अंक माया रंग तिख न बजावे
1: हर का नाम जपत आगावे
0: जे मारगे जाते केला
1: हर नाम संग होत सहेला
0: ऐसा नाम मन सदा त्याइया
1: नानक गुरमुख परम गत पाइए
0: छूटत नहीं कोट लख बाही
1: नाम जपत पार पराही
0: अंक बिगंजय

0: हर नाम की सेवा,
1: नानक पूजे हर हर देवा,
0: हर हर जन के माल खजीना,
1: हरता जन को आप प्रभ दीना,
0: हर हर जन के ओट सतानी,
1: हर प्रताप अवर न जानी,
0: ओत पूज जन हर रस राते,
1: सुन समाद नाम रस माते,
0: आठ पहर जन हर हर जपे,
1: हर का पत भक्त नहीं छपे,
0: हर की भक्त मुक्त भ करे,
1: नानक जन संकेत।

0: योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया
1: सकल त्याग मन बद्धे फिरिया
0: अन्य प्रकार किए बहुत जतना
1: दान हो में बरतना
0: श्री कटाए हो में कर राती
1: भारत नेम करे बोपाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नान गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौखंड पृथ्वी फिरे चर जीवे
1: महादास्त पी सरथी वे
0: अगन माए हो मत प्राण
1: कान कह सब है भर पूम दान
0: न्योले कर्म करे बहु आसन
1: जैन मारन संजम साधन
0: निमक निमक कर श्री कटावे
1: हमें मेल न जावे
0: हर के नाम संसार कछ ना है
1: नानक गुरमुख नाम जप

0: कछु न बूझे जय प्रसाद तारू पर सुख बसै जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: पवन पाप कमला
0: जय प्रसाद पोगे सबरसा
1: सामग्री संग साथ वसा
0: दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे
1: नानक काढ़ लेहो।

0: होवे,
1: और उसका विश्वास ना होवे,
0: जिसकी बस्ते सागर रखे,
1: प्रभु की आज्ञा माने माथे,
0: उसते चौगन करे निहाल,
1: नानक साहिब सदा दयाल,
0: अनक पात माया के हेत,
1: सर्वत होवे जान अनित,
0: बिरखी छाया सो रंग लावे।

0: रह तवर कछ अवर कमावत जानन हार प्रभु परवीन
1: बाहर देखना काहू पीन
0: अवर उपदेश आप न कर
1: आप जावत जन में।

0: बसे सुख मंदिर
1: ध्याए सदा मने अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: सदा ध्याये ध्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: त्यागत अवलवावे
0: जय प्रसाद सुख से सोई जाय
1: आठ पैर ताका जस गावी
0: जय प्रसाद तू सब को माने
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद तेरा रहता धर्म
1: सदा ध्याए केवल

0: जय प्रसाद तुझको न पहुँचे,
1: मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
1: नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद अपूखन पैरी जय,
1: मंतिस मेस को आलस की जय।
0: जय प्रसाद अस्वस्थ स्वारी,
1: मंतिस प्राग को कबू नाम विसारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना,
1: राख प्रोय प्रभ अपने मन।
0: जिन तेरी मन बंत बनाई,
1: उठे वैसा तिसे त्याई,
0: तिसे त्याई जो एक लख।
1: नानक तेरी रखे,
0: जय प्रसाद करहे पन बोदान,
1: मन नाठ पैर कर तिसका ध्यान।
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी,
1: इस प्रभु को सास सास चितारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सोप्रा सिमरो सदा अनूप।
0: जय प्रसाद तेरी निकी जात,
1: सोप्रा सिमर सदा दिन रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है,
1: गुर प्रसाद नानक जस कह।
0: जय प्रसाद सुने करनाद,
1: जय प्रसाद पेखे विस्माद।
0: जय प्रसाद बोले है अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहज जय वसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है,
1: जय प्रसाद पूरन फल है।
0: जय प्रसाद परम गत पाव है,
1: जय प्रसाद सुख सहज समाव।
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मान जा।

0: जान मन सदा हजूरे
1: जय प्रसाद तू पावे साचे
0: रे मन मेरे तू ता स्वराज
1: जय प्रसाद सब की गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाए जपे सो नाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास
0: प्रभु दया ते कमल विकास
1: प्रभु सब प्रसन्न बसे मन सोए।

0: की शोभा प्राप्त माहे समानी।
1: साध के संग गोचर मिला है,
0: साध के संग सदा परफुल्ल है,
1: साध के संग आवे बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस पुंचा,
1: साध संग होए सब की रेन,
0: साध के संग मनोहर बैन,
1: साध के संग नकत हुंता वे,
0: साध संग अस्तत मन पावे,
1: साध के संग माया ते पिन,
0: साध संग नानक प्राप्त।

0: साध प्रभु बने आई।
1: साध के संग न कबूतावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस्त गो चला है,
0: साधु के संग
1: जस है। साध के संग बसे थान ऊंचा,
0: साधु के संग मैल पहुंचे।
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु कह करवान।
1: साध के संग सब कुल धारे,
0: साध संग साजन भी कुटुंब।

0: अमृत गुण गाय
1: साथ के संग सर्वतान गम
0: नान साथ के संग सबल जन्म
1: साथ के संग नहीं कचकाल
0: दर्शन पेट तो होत निहाल
1: साथ के संग कुलु कतहर
0: साथ के संग नाक पर हर
1: साथ के संग इहा उहा सहेला
0: साथ संग विश्रत हर मेला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साथ के संग न व्यर्थ जावे
1: पार ब्रह्म साध रिद बस
0: नानक उदरे साथ सुन रसे
1: साथ के संग सुनो हर नाव
0: साथ संग हर के गुण गाओ
1: साथ के संग न मन ते बिसरे
0: साथ संग सर पर निस्तरे
1: साथ के संग लगे प्रमीठा
0: साधु के संग काट का डीठा
1: साथ संग पे आज्ञाकारी
0: साथ संगत पई हमारी।

0: प्रभाप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुरा न पाया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत।

0: सदन संग राचे
1: मंतन अंतर सिमरन गोपाल
0: पर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ है अवरा नाम जपावे
0: नानको वैष्णु परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भक्त का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मंते बिनसे सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: सत संग पापा मल खोवे
0: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मंतन अर्पे विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पाव है
1: सो पंडित जो मन प्रबोध
0: राम नाम आत्मै शोध
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित पे जो न आवे
1: वेद प्राण सिमरत बूझे मूल
0: सुख में जाने स्थूल
1: जो वर्णा को दे उपदेश
0: नानक पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वर्णा में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: संग पावे जन को
1: कर कृपा अंतर और तारे
0: आस प्रेत मुदर पाथर को तारे
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत के ते न पाइये तरम
0: नानक दिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास रांतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर के परवान
1: अपने दास को आप कृपा करें
0: दास को सब सोजी परे

0: तैसा स्वर्ण तैसी युष्माटी,
1: तैसा अमृत तैसी वेखाटी,
0: तैसा मान तैसा अभिमान,
1: तैसा रंग तैसा राजान,
0: जो वर्ताए साई जुगत,
1: नानक फल कहिए जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: जे जित का राखे तैसा।

0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते को रखे ना कोई,
1: संत के दुखन थान प्रस्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक सत्संग निंदक भीतर है,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काव जोन लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिग जोन करमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन

0: संत की दुख ना सुखते टरे,
1: संत के दुखी को ना ही ठाव,
0: मान संत पावे ता ले मिला,
1: संत का दुखी अद बीते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे,
1: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर ते थोता,
0: जो सास बिना मृत की लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किछ ना आहे,
0: अपन बीज आपे ही खाए,
1: संत के दुखी को अवर ना रखनारे,
0: मान संत पावे ता ले उबार,
1: संत का दुखी इउं बिलाए,
0: ज्यों जल बिहोन मछली तड़फड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पावन इदन नहीं तड़पे।

0: दिए रहे अगाए
1: मोर न तिसना लागे आए
0: मारे रखे एको आप
1: माने के किशना ही हाथ
0: तिसका हुकम बूझ सुखोए
1: तिसका नाम रंग कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए।

0: निर्गुणया सर गण पियो
1: सगली मोहे
0: अपने चरित प्रवाह बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: हर बिंदु जा नाही कोई
1: अंतर एक को सोए।

0: पाए,
1: मन वचन नानक फल पाए,
0: संग न चल तेरे तना,
1: क्या लपटा है मूर्ख मना,
0: सुतमीत कटंबर बनता,
1: इन्ते कहो तो कवन सनाता,
0: राज रंग माया बिस्तर,
1: इन्ते कहो कवन छुटकार,
0: आस हस्ती रथ सवारी,
1: झूठा डंप चूट पासारी।

0: असीस के अपने आसन
1: जन्म मरण को कहा बिना सुन
0: जब पूर्ण करता प्रसोए
1: जम की त्रास कहो के सोए
0: जब अभगित गोचर प्रवेका जब नाथ निरंजन गोचर गा दे
1: कौन छुटे कौन बंधन वादे
0: अपने आप आप ये चर जा
1: नानक अपन रूप आप यो पर जा
0: जन निर्मल पुरख पुरख पत होता।

0: संग बनाई
1: बाप कवन भाई बाप मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला आप परवीन
1: देख देव का कोची
0: जब अपने आप आप उतारे
1: सगन अब सबन कहा।

0: तारी सब साच
1: अपन संगराज
0: ताकि गत मित कही न जाए
1: सर हो सोची पाए
0: टिक्का किया सब परवान
1: नानक
0: जो जाने ते सदा सुख होए
1: मलाए लए प्रभ सो
0: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत।

0: तो कर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी
1: चरपर छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख।

कर जन्म मरण दुख होवे सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दे जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम वाहे गुरु साहिब जी

दुतिया माल कौ सख आला पह संग रागनी पांचो थाप है गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तना श्री पांचो गाई माल राग कौ सख संग लाई।

अष्ट माल कौ सक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठै तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावह सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवा।

0: मेरा भाई साहब जी दुख कौन निवारे,
1: ओ मेरा भाई साहब जी दुख कौन निवारे, ओ मेरा भाई साहब जी दुख कौन निवारे,
0: पट्टी बिच नवाब ने हन का

दारू सिंह ने सुन लिया दुख भरिया साका, दारू सिंह ने सुन लिया दुख भरिया साका, ओ गुस्से दे विच भर गया सिंह।

साथ संगी जी आप जी बैठे हो तो मैं बेनती करांगा गुरमुख माई भाई साथ संगत मेरे भी मेरिया भैन जितने भी बैठे हो नाल दे नाल कीर्तन का गायन करो ताकि समा घड़िया जड़िया वो लेखे विच लग सकन शायद मन किसी टाइम जुड़ जाए तो सतगुरु जी वो हाजरी साड़ी प्रवान कर लैन क्योंकि असं कट्ठे जदों नाम जपते हैं कीर्तन करते हैं उहदा असर साढ़े ते हुंदा है इस करके सतसंगत की महिमा बहुत ज्यादा दसी गई है तो बेनती है क्योंकि हाजरी मन की है मेरे मन नाम नित नित ले शरीर ते आ जाता है गुरुद्वारे शरीर करके तो असं बैठ जाते हैं शरीर करके वाहगुरु ही कहन लग पेंदे हैं विच मन नहीं शामिल होता मन की गैर हाजरी हो जाती तो उन्होंने हाजिर करने वास्ते इस करके एक दो सेकेंड आएगा तीन सैकेंड आएगा चार सैकेंड आएगा फोकस बनता ही नहीं क्योंकि साड़ी प्रैक्टिस ही नहीं साड़ा अभ्यास नहीं है तो कोशिश करिए अपन भैनों भी मैं बेनती करांगा वीर भी बेनती करांगा शब्द की रीत बड़ी प्यारी है मेरे मन नाम नित नित

सतगुरु जी ने किया बंदगी वास्ते गुरु की बाणी च किसी जानवर ली नाम जपन की हदायत नहीं, आदमी नू बंदे नू, क्योंकि आदमी च ज्यादा विकार होंदे ने, पांच दोख आ जाते ने, पांच रोग आ जाते ने, और माया जड़ी है ये अपना प्रताप बरता दिंदी है। तो होमे की जड़ी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती, कई जिते गुण करके होमे होंगी, कई च बगैर गुण तो भी होमे होंगे। सतगुरु बाणी च कहते ने ये जे खर खोते स्टाइल आदमी होंगे ने, इन्होंने दिमाग काम नहीं करता, ये असली खर वो हैं जेडे बिना गुण तो गर्व करते, किसी गुण से हंकार टिकया होता है, हुंदा है, जेडे गुणी बंदे होंदे ने हंकारी भी होंदे ने। सतगुरु कहते ने पर असली खोते दसा केड़े ने, कहो नानक ते असल खर, असली प्योर जो बिन गुण गर्व कर, जो बिना गुण तो बिना किसी क्वालिटी तो अहंकार करते, असली असली मूर्ख भाव की मूर्ख हो। तो एदी दवाई जड़ी है होमे दी दवाई जड़ी है नाम है होमे, दीर्घ रोग है, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ा दारू भी इस माए ए दारू है, नाम जपन दे नाल बंदगी करम दे नाल ए मैं मेरी खत्म होंगी। सतगुरु कहते हैं।

संग्रह की करना है, कोई उसका जिक्र भी नहीं करता, कोई जिक्र करेंगे ना छो जी करना, कोई और गल करो, किसी और गल के उत्ते तवजो दो, ये तो एवं की गल है।

पंक्ति है कि असी ते आजाद घूमते फिरते हैं, जिथे मर्जी जाके उडारी मारते, जिस स्थान ते मर्जी जाके शाखा ते जाके बैठ के असी भोजन करते हैं। तू ते पिंजरे दे विच डकिया होया, तेरा कहता जीवन। ते इन्ने नू एक बिल्ला आ गया, बिल्ले ने उहदे विचों झपटा मारिया एक तोते नू, ते तोते नू फड़ के खा गया। सुआ पिंजर ना खाए बिलास, सतगुरु के सुआ मैंने सुअर था मैंने तोता, जेड़ा तोता गुरु दे हुकम दे विच है, गुरु दे पिंजरे दे विच है। इत्थे पिंजरा कैद नहीं, इत्थे पिंजरे का मतलब हुक्म है, पिंजरे का मतलब बंदगी है, पिंजरे का मतलब गुरु की आग्ञा है, उस विच रहना। ते ओ तोता कहन लगा, देखो तुसी बाहर सौ ते तानू बिल्ले का खतरा सी, मैं अंदर हाँ, मैनू पिंजरे दे विच कोई कुछ नहीं कर सकता। सतगुरु सच्चे पातशाह की बाणी का प्रमाण उन्होंने दिता, ते ओ कंध ते लिखिया जो वाक सी, भावें कच्ची बाणी सी, बंदगी है तो बंदा नहीं तो गंदे का गंदा, क्योंकि साढ़े च विकार बड़े होंगे ने। गुरु कहते ने पशु तेरे नो चंगे ने, पशु मिले चंगियाइया खड़ खावे अमृत दे। तेरी तेरी खूबी का एग्जाम्पल देना हो ते जानवर की लोड़ पैंदी है, वफादारी का एग्जाम्पल देना तो कुत्ते की लोड़ पैंदी है। जे तेनू समझाना हो, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने, ते ओ दृढ़ता जो कुकर दे विच है ओ तेनू दृढ़ करानी पैंदी है। ते स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नान ए विधार भजो एक मन होए एक चित। गुरु कहिंदे ने तू कणक पैदा करदा है, कणक दे विचों दाणे सारे बाहर कढ लैंदा है, तू कणक खा के भी नखिद है, पशु मिले चंगियाइया खड़ खा, ते जिहड़ी तूड़ी बच जांदी जिहनू तू सुट दिंदा है उसनू पशु खा के अमृत वर्गा दुध दिंदा है। गज के आखो सतनाम। पशु मिले गुरु नानक सच्चे पातशाह की पंक्ति है।

मेरे परम प्यारे छोटे भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी एक शब्द के नाले भी तबला बजाओगे, फिर आनंद साहब का पाठ कर ले, फिर पप्पू के बुलावा। ये कोनरे वाला बंदा नहीं गा, ये लाइट वाला कोनरे होर तरह सुनावांगा भाई जे बजाएगा।

रोवण सगल बिकारो, रोवण सगल बिकारो, गाफल संसारो, माया कारण रोवे, चंगा मंदा किश सूझै नाही, एहो तन एवै खोवै। एथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुना बाबा जानिए, जे रोवै लाए प्यारो। बड़हंस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हम। रोव है बिरहा तन का, अपना साहिब संभाले हम। साहिब संभाले पंथ निहाले, असा पे उथे जाना, जिसका किया तिन ही लिया, हुआ तिसे का पाना। जो तिन कर पाया सो आगे आया, असी के हुक्म करेहा, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हा। मरण ना मंदा लोका आखी है, जे मर जाने ऐसा कोए, सेवे हो साहिब समर्थ अपना, पंथ सुहेला आ गए होए। पंथ सुहेले जाव हो, ता फल पाव हो, आगे मिले वडाई, भेटे स्यों जाव हो, सच समाव हो, ता पात लेखे पाई। महली जाए पाव हो, खस मैं भाव हो, रंग स्यों रलिया माने, मरण न मंदा लोका आखिए, जे कोई मर जाने। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवाणु, सूरे से ही आगे आखिए है, दरगह पावे साची माणु। दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक त्या

रूप ना जाने सोहनी है हुक्म बद्धी सिरकारो बालक बिरद ना जाननी तोड़न हेत प्यारो नौ दर ठाके हुक्म सच्चा है।

है, लिखियड़ा लेख न मिटी है, दर हाकारड़ा आया है। हाकारा आया जात सपाया, रुन्ने रोवण हारे, पुत भाई पाती जे रोवै, प्रीतम अत प्यारे। भै रोवै गुणसार समाले, को मरे न मोया नाले, नानक जुग जुग जान सजाना, रोवै सच समाले। भै रोवै गुणसार सम

सुख दुख जेह पर सह नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेहे, कंचन लोह समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है अठो नंदन। प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही। प्रथम भैरवी

है, बंगालम मद माधव गाव है, ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पांत, अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र, द्वितीया माल कौशक आलाप है, संग रागनी पंचौथा पह गोंड करी अर

प्रबल चंड कौशिक उबारा खोखट अपोरा नद गाए अष्टमाल कौशिक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत।

पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गाव है पंचो संग बरंगन लाव है सोरठ गोंड मलारी।

हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया।

कह नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। सो कहो टल गुर सेवी है एहन इस

गोर कियो बंदानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की पावन गोद अंदर माता गुरदेव कौर जी दे श्रद्धांजलि समागम अंतम अरदास विच एकत्र होई गुरु सारी साध संगत जी परिवार वालों आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी परिवार नाल इस दुख की घड़ी विच शरीक होने लई अपना कीमती समा कढ के आए हो। सतगुरु पातशाह कृपा करन, परिवार नू चढ़दी कला बख्शिश करन। बेनती है कि हुण कड़ा प्रसाद की देग आप जी ने बाहर ही आप जी ने काउंटर तो लैनी है। उस तो उपरंत गुरु के लंगर तैयार ने, लोड़ अनुसार प्रसाद पानी जरूर छक के जाने की कृपालता करनी जी। नाल ही गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी, गुरद्वारा साहब के समुचे स्टाफ वालों भी माता जी दे परिवार नाल उन्हां दे सदीवी विछोड़े की हमदर्दी प्रगट की जाती है। दस रहा पासों सेवावान निभा हुई बेअंत प्रकार दुलों खिमा जाचना है। आओ हूँ बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी गुरद्वारा जामनी साहब वजीदपुर फिरोजपुर वाले आप जी गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

जन्म वृत्ता जात रंग माया कै रहाओ, जापता संजन तरना कुमाया, सेवा साधना जानिया राया।

सुखी बसे मोरो परवारा, सेवा से सबे करतारा, मोर चानिज कर दे करिया, सब बैन को आसंगरिया, पूर्ण होई हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है छाड़ कोई अब न त्याओ, जो बचा सो तुते पाओ, सेवा सिख हमारे तारी है, चौं चौं सतन हमारे मारी है, आप हाद मुझे बरिया, मन का तरसन वरिया, हुजो सदा मारे पचा, श्री अस तुझ जो करियो रचा, राख लियो मैं राखन हारे, साहिब संत साहेब प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल का किया तमाशा, जमन का जोगी शिव किया, वेद राय ब्रह्मा जूथिया, जमन का सलो सवारा, नमस्कार है ताई हमारा, जमन का सजत बनायो, देव दया जच्छन उपजायो, आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु संजीव हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सगल प्रजा जनी आसवारी, शिवकन को सब गुण सक दियो, सतन को पल मोहब्बत किया, कट कर के अंदर की जानता, भले बुरे की पीर पहचानता, चिंती दे कुंज रसूला, सबर कृपा दृष्टिकर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पी पहचाना, कट कर के पट पट की जाना, जब कर करा कर तारा, प्रचार तर्त तब दे अपारा, जब आखर करतो कबो, तो मैं भी सो दे सबू, जेते बदन से सब तारा, आप अपनी बूझ उचारा, तुम सभी तेरे दिन आलमा, जान तबेद पे तेरे आलमा, दरंका निर्भगा निर्लंब, आद अनिल अनाद सांब, ताका मुहूर्त उचार तपेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको कर बहान अनुमानता, मां मूड़ कछ भेद न जानता, महादेव को कैसदा सेव, निरंकार का चिंत न पेव, आप अपनी बुद्धि जती, बरनद पिन पिन तोये तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, केब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुस्वरूपा, रंग पयो राव के पूपा, अंडा जेरा सदकिनी, उत्तम जुकान

इनी कौ फू राजा वह बैठा कौ सिमट पयो संकट इकट्ठा सिगरी सिर दिखाया चंपा बा आज गा सरू श्यंपा बा अब रचा मेरी तुम करो सिखियो बारे सिखिया संग्रो दुष्ट जिदे उठो तो पाता सगल मनेश करो ननकाता जी अस्तुत अवसरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हवे मरे पुरख जन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब डारे जो कल को एक बात आए है ताके काल निगनय आए है रचा होए ताए सब काला दुष्ट अरि टरे तत्काला कृपा दे तन जाए निहर हो ताके ता तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हो दुष्ट सास है सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पांते तायू बारा जिन नाम त्यारो कहा दर्द दुष्ट दो तेरा खड़ग के तो मैं सन तिहारी आभा दे लियो बारी सर्वठोर मोहो सहाई दुष्ट दौते लियो बचाई सवैया पाए गए जबते तुमरे तबते गुमराग तरे नियानियो राम रही पुराण कुरान अनेक है मत एक न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सब बो भेद कह हम एक ना जानियो श्री

गयो तुहारो द्वार, बहे गए की लाजस गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को चाड़ के गयो तुहारो द्वार, बहे गए की लाजस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर तै पाया, सहज से ती मन वजिया बाधाइया, राग रतन परवार परियां शब्द गावनियां, शब्दों ते गावो हरि के राग, मन जिनी बसाया कह नानक नंद होवा, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ, तू सदा रोहर नाले हनारो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा, काज सब सवारना सवना गला सम्रत स्वामी, सो क्यों मन विसारे कह नानक मन मेरे, सदा रोहर नाले साचे साहिबा, क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे सदा सिलसिला तेरी, ना मन वसावे नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कह नान सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुखमन आए वजिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर बिटो, जिस दिया ए वडियाइया, कह नाल सुनो संतो सबत रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सबागे, कर सबागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दोत दवास कीते काल कंटक मारिया, तुरकरम पया तो जिनको से नाम हर के लागे, कह नानक तैस गोवा तित कर आनंद वाजे, अनंत सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पर पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रो संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै ससे पूरे गुटे जानी, सुनते पुनीत कहते पवेता, सतगुर या परपूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे, वाजी अनद तूरे सुनते पुनीत कहते पवेता, सतगुर या परपूरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे, वाजी अनह तूरे मुद्दामनी महला पंजवा।

हीरा गुरदीनू मंतानी डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिन

इतने ही हाजिर प्रवान करनी जी होइया पुल्ला चुका दी बख्शना बख्शनहार हो और सब गज के फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की।